दौड़कर घोड़े से लिया, कुछ उसके सौत कहा। बाद पुरवासियों को मुख सुनकर अत्यंत पीड़ित हुए हैं। धैर्य दागों को दवग्नि मध्य साइड ऑफ अ बर्न्ड, यू नो लाइक फायर दैट बर्न्स अ क्रीपर, व्हेन फायर टेक इन बुश आवर बुश इज कैकल एंड बर्न, दिस इज हाउ शी फील्स इनसाइड, शी फील्स लाइक शी इज बर्निंग इनसाइड। बचन को स्मरण करके कमल कमला तो लजी को नेत्र आंसू कहने पर शिकुन बेड पेन अगेन स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ टियर्स फॉलिंग ऑन हर। लंबे लंबे श्वास भरते दुख भरते पाती है उठे लॉन्ग साइज एंड ओवरकम बाय द ग्रीफ शी सेज टू हर सन, हे पुत्र अपराध को मत मानो है, द मिस्टेक इज नॉट योर्स, यू नो जो पहले दूसरे को दुख देते हैं, द मिस्टेक इज माइन, उसका उसका पल निसंद भोगने पड़ते हैं। इफ आई हैड बीन डिफरेंट देन दिस वुड नॉट हैपन टू यू। सुरुचि जो कहा सत्य है, व्हाट सुरुचि टोल्ड यू इज द ट्रुथ, क्योंकि एक तो तूने मुझे भाग्यहीन उदर जन्म लिया है, यू आर बोर्न फ्रॉम मी एंड आई एम अनफॉर्चुनेट, इफ आई एम अनफॉर्चुनेट एंड आई एम अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्च्यून यू विल बिकम द सेम थिंग, शी इज ब्रोकन बाय व्हाट इज टोल्ड टू हिम एंड दूसरे मेरे स्तन को दूध पीकर इतना हुआ है, राजा को मुझको भाड़ कहते, मे बी इट्स ट्रू इफ यू वर बॉर्न फ्रॉम हिम इट वुड हैव बीन बेटर, फ्रॉम हर इट वुड हैव बीन बेटर। तुम मन में अत्यंत लचित हो होते हैं एंड शी फेल्ट अ लिटिल बिट अशेम्ड। हे वत्स, ईशा चौकर निष्कपट होकर सत्य वचन तो विमानते हैं कहाँ, व्हेन शी लिसन्स टू दिस। ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसको तो स्वीकार करके वासुदेव भगवान गो ऑन, द बेस्ट पर्सन टू रेमेडी दिस एंड टू गिव यू सॉलिस एंड कंफर्ट इज भगवान वासुदेव, इज भगवान श्री कृष्ण। चरणाविंद राधन करे हैं, इफ यू वर्शिप हिम अगेन एंड अगेन, जो तुम नहीं को राज सिंहासन इच्छत, इफ दिस इज व्हाट यू वांट यू विल गेट। सर्वगुजन भगवान वासुदेव संसार को पालन लिए हैं, द डिवाइन लॉर्ड हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सतो, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल इन दिस वर्ल्ड। आत्मा श्वास जीतने वाले जिनको वंदना करता हूं, गो सरेंडर योर सोल टू हिम लाइक ओमेगा, दैट्स व्हाई दिस भजन इज सो कंसीडर्ड टू बी सो ग्रेट, इट्स कंसीडर्ड टू बी सो ग्रेट because Mira surrendered her soul, everything that she had she surrendered to God, and in the same way jinka vandana karta hu go and surrender to him। charan kamalo ke siva brahma ji ko nischay brahma pragat hote hain, your forebearers those who have gone before you this morning, I was talking about traditions, I think group was mentioning tripuran, how much you all this family would have done many bhagavats before, not so, who would have performed them, who would have done the ones before Kamala, which your father mother and father, and who would have done it for them, Krishna Pandit, the former dharmachara, former dharmachara, previous dharmachara, Pandit Krishna Maharaji of Karani, yes, he would have done at least about four, because seven bhagavats would have been done by the former dharmachara for the family. This is tradition, this is how it continues, and same thing that is said, that's the benefit that Mukesh and inherited, you know, because of what Kamala and Mahadev have done, the children inherit the benefit, the blessing of the seed that is planted by the parents, the family on the whole, it's just one family. And the children inherit the blessings. And this is what parents is telling him. That usi tumhara pitamah munyuj ko avinashi ke antaryami karchit buddhi ko dakshinwa, your father did the same thing, your grandfather. Puda ko upai se mile hain, that do the same thing, follow them, go. If you want to get something in this world, go by God. Don't go to anybody else. Go to Bhagwan. God is the one who looks after everything. Go to Bhagwan. Prapt hua hai putra
जिन भक्त वत्सल श्री नारायण के चरणान बिन पकड़म मोक्ष खोज लेते हैं, तुम भी उन भगवान को आश्रय लेकर सर्च फॉर हिम, फाइंड हिम, एंड इफ यू फाइंड हिम ही विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू आर वांट। ऐसे निज धर्म सुशोभित मन में आदि पुरुष स्थित भगवान वासुदेव भजन करो, गो एंड सीक हिम, फाइंड हिम, सिंग हिज प्रेजेस। बिना कमल नयन भगवान तुम्हारा दुख दूर करने वाले हैं। Without his blessings, any sorrows you have, you know, there's an old bhajan that we sing, Sharan.

बोले हे भगवान सर्वंतरयामी चराचर लोक को प्राण के और दुख हो गए हैं. दिस चाइल्ड इज अबाउट टू कॉज इम्बैलेंस इन द यूनिवर्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिज पेनेंस. इसके कारण शरणागत आपके शरण हो. गो एंड मीट हिम ओ लॉर्ड. दैट वी आर मेकिंग अ प्रेयर. भगवान बोले कि तुम कुछ भाई मत करो. डोंट वरी. एक काल में तब किया है. आई एम अवेयर फॉर टू यूज डूइंग. निवृत्त करूंगा. तुमने अपने अपने के स्थान जाओगा. वो बात यह हो सुतान पाठ को पुत्र रूप तप करने से मुझे उसकी आत्मा को सम्यक प्राप्ति हुआ. आई एम वेरी फुली अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग. और ही हैड इन हिज माइंड फ्रेम्ड केप्ट हिज कॉन्सेंट्रेशन धर्म ध्यान एंड समाधि. माइंड वॉज फुली मर्ज्ड इन फोर फॉर्म फॉर्म ऑफ द चतुर्भुज फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. और भगवान को एक एक छोट को आंखों को चमचमाले भगत चतुर्भुज रूप को जब हृदय न देखा. ही हैव द फॉर्म फॉर्म इन हिज आईज एंड क्लोज हिज आईज एंड सो अटैच ही इज. दैट्स व्हाई दैट्स व्हेन यू टर्न इनवर्ड्स. श्री कृष्ण सेज इन द गीता दैट बिकम लाइक अ टर्टल. पुल योर senses inwards and you shall find so like that. And hriday ko dhyan karne hain uske darshan. Bhagwan went and shows the form but fret opened the eye. So he take his jeev ko ishwar ko nirnay ko gyan vigyan hoye. Dhruv ji samay ko devtaon. So what happens?

0: देव की आदिशक्ति नव दुर्गा माता की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की साध के दानवत सकल पंच की जय।
1: You have been listening to a nightly coverage of a Bhagavat Mahapuran Yajna taking place at Manurud Shiv Mandir, hosted by Sri Mukesh and Srimati Susan Ramchand of Florida. Pandit Navin Maharaj officiated. This live broadcast.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: हम अपना दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं एक पंजाबी गीत से।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।